शक्ति का एक रूप है ध्वनि, जिस शोर से सृष्टि ये बनी, हर प्राणी चीजों में वो समी, जिसका स्पर्श पहुंचाता है नमी, जैसे मन में विचार लहराते जैसे सागर, प्राण भी तो एक लहराओ बसा इसका या के भीतर।